शंकर जय किशन के साज पर मैं थी मुकेश, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर दर्द से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बीस हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकिती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकालकर ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

ये शानदार द्वैत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

0: देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकली निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।
1: ये अपिका एनख एख्त फाहन हिंदुस्तानी रेडियो ओवर द हेल वर्ल्ड, नए से नए पुराने से पुराने गीत आपके लिए यहाँ से तैयार करके और आपके कानों तक लाया जाता है। इस वक्त के मेरे दोस्त, आप जहाँ भी हो जैसे भी हो, जरूर से यही दुआ प्रार्थना है कि हम सब हंसते मुस्कुराते हुए, हाँ बिल्कुल वैसे मुस्कुराते हुए बत्तीसी दिखाते हुए ये पल को स्वागत करें। कारण कि आप है तो सब कुछ है, वैसे तो सब कुछ है और रहेगा, हम भी रहेंगे शायद। ये भेषभूषा में नहीं बल्कि हम पूर्ण जन्म में फिर से वापसी आ जाएंगे।

प्रकृति के एक भाग्य हम सब भी है, मनुष्य भी प्रकृति के एक भाग्य है। प्रकृति से

बाबा बाबा वाह इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया, ओए हमको।

दिन ढल जाए मोहम्मद रफ़ी जी के सुंदर सी आवाज़ में, प्यार भरी आवाज़ में सुना दिए। इस बार है दिन है बहार के फिल्म वक्त से।

है क्या बात है, रोना तो नहीं चाहते है, बस हंसते हंसते जिंदगी गुजारे मेरे दोस्त, क्योंकि वक्त दोबारा नहीं आता, ये जिंदगी भी दोबारा नहीं मिलती। फिल्म भूत बंगला से ये गीत आप

सिवा कोई और ना मिले क्या बात है, कि दुआ है कि तेरी मोहब्बत के सिवा कोई और ना मिले। जिंदगी में सिर्फ तू मिले, जिंदगी में सिर्फ तू मिले, या फिर जिंदगी ना मिले। क्या गहराई है, क्या गहराई है ये शेर शायरी में।

0: मुझे।
1: सच में कहा, मैं भी कहती हूँ कि ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, जिंदगी में जैसे भी है बस मुस्कुराकर और आगे बढ़ते रहना। दुख जो आए तो पल में वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर सुखी हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ, मेरी हर खुशी में तुम और तुम्हारा

तेरी एक मुस्कुराहट मेरी जाने की वजह, मेरे जीने की, जाने तो नहीं बल्कि तुम्हारे पास आने की वजह बन गई है।

क्या बात है, फिल्म गुमराह से यहाँ से आपके लिए स्पेशल स्पेशल सभी लिसनर्स के लिए पेश किया गया है। और इस बार आपके लिए प्लेलिस्ट पर है कि दिल के देखो चेहरा को ना देखो, चेहरा अक्सर धोखा दे जाते हैं, है ना। और कहते हैं कि तेरी बाहों की गर्मी में सारा यहाँ भूल जाते हैं हम, तेरी एक मुस्कान पर हम खुद को हार जाते हैं। लफ्जों में कहाँ बयां हो पाता है ये एहसास। हाँ, हम लफ्जों में ये बयां नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं। तुम पास हो तो हर पल प्यार बन जाता है। A lovely moment for everyone. ये इंस्ट्रूमेंट के साथ आपको हम यहाँ से सुनाए, देखो तो कहाँ है, कहाँ चला गया। हाँ, वादा था सुनाने के लिए आपको कि दिल को देखो चेहरा ना देखो।

वाकई में दिल सच्चा और चेहरा झूठा, फिल्म सच्चा झूठा से आपके लिए यहाँ से पेश किया गया है। ये दो लाइन आप जरूर सुने और इस पे थोड़ा से गौर करें और अपने आसपास में जरूर से ख्याल करना कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है। ये हकीकत है। आप जरा अपना इर्द गिर्द में संगठन में बैठना, दोस्तों में बैठना, तो आप थोड़ा से ख्याल करना। ये बात सही है कि इंसान जितना अंदर से अकेला होता है उतना ही बाहर से मुस्कुराता है।

दो वही फिल्म से निकाल दिया गया है, फिल्म सच्चा झूठा। किशोरदास जी की आवाज में, किशोरदास जी की आवाज में कितना गर्मी है, कितना प्यार है, कितना एहसास है।

की बारिश हाथ में उसका हाथ था। चार कदम साथ चले थे, हाँ सात कदम साथ चले थे, आँख खोली तो ख्वाब था। हाँ ये ख्वाब जो हम देखते हैं ना बैठ के आँख मूंद कर सो कर, कभी कभी हम जागते हुए भी ख्वाब देखते हैं। तो जो आप ख्वाब देखते हैं ना मेरे दोस्त, तो कोशिश करना कि इसके हकीकत बना लेना। हाँ जो पॉजिटिव ख्वाब है ना, dat u alleen al uw positieve gedachten wat u denkt, dat die maar in vervulling komt. Tere bina har khushi adhuri si lagti hai, tere bina har khushi adhuri si lagti hai, tu paas ho to har mushkil aasan lagti hai. तो सोचो आप कितना अहम है, आप में कितना, आप कितने पलंग रेखे। और यहाँ से आपके लिए एक खूबसूरत गीत सुंदर आवाज में, और फिल्म का नाम यहाँ से हम आपको बता देते हैं। फिल्म का नाम है ऊंचे लोग, और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1965 में, हाँ मोहम्मद रफी जी की आवाज में फिरोज खान ये गीत को प्लेबैक की है। तो सुनेंगे हम कि जाग ए दिले दीवाना।

वेरी रोमांटिक गीत है, अल्फाज से इनमें और इनकी धुन जो है कितने रोमांटिक से ये गीत, रोमांस वाला गीत और रोमांटिक मूड में ये भी हमको सुना दी है। और ये कौन था? हाँ, मोहम्मद रफी जी के सिवा और कौन हो सकता है। से भी महंगी भावनाएं होती है मेरे दोस्त, कि समय से भी महंगी भावनाएं होती है, जो समझो उसी पर खर्च जरूर से करना। जो आपको समझे, आपके भावनाओं को समझे, उसी पर अपना जीवन जो है, जो पल है, जो खुशियां है, उसी पर खर्च करो। कहते हैं कि ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो। हाँ, ख्वाहिश इतनी है कि कुछ ऐसा मेरे नसीब में हो, वह चाहे जैसा भी हो, बस तुम मेरे करीब रहो। और इस बार थे फिल्म जूली से, माई हार्ट इज बीटिंग।

कितना सुंदर, कितना प्यार भरे गीत, तुम तो प्यार हो। कितने मिठास है ये सब गीतों में और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो इसमें सब रचाई गई है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन मिलता है, देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतजार है। जीवन साथी कब मिले ये पता नहीं और मौत कब आए ये भी पता नहीं। तो मैं कहती हूँ कि मौत का इंतजार मत करो, वो तो हर पल पे आ जाएगा। बात ये है कि अपना जीवन जो है उसे खुल कर जियो।

यही उम्मीद है कि सिर्फ दिल नहीं हम मेरी, बल्कि आपके दिल भी वैसे ही गाता रहे मेरे दोस्त, गाता रहे मेरे दिल। फिल्म गाइड से निकाल दिया गया है और ये फिल्म नेकंतीन फैफन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है। और फिल्म गाइड के बाद बात आपको लेकर चले हम मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत पल में कि मेरे मन की गंगा और फिल्म संगम से नेकंतीन फैफन सेस्तक ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है।

बात हुई ना कि होगा होगा और जरूर होना ही चाहिए संगम। मैं ये कहती हूँ संगम तो होना चाहिए, पर किससे होना चाहिए ये भी समझ बूझ कर, और बंधन में बांधो मेरे यारो। सहेली हो यारो हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, सहेली है जो भी बंधन है, ये संगम जो है इसे समझ बूझ कर रिश्ता जोड़ो फिल्म संगम से। हाँ, छलांग तो मार दी इस बार, चले सुने याहू।

या माय दोस्त, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे जाए, जा कहे, नेवर माइंड नेवर माइंड। और उसके बाद कि आज फिर जीने की तमन्ना है, फिल्म गाइड से फिर एक बार से

हाँ जी ले भैया जी ले, मरना तो एक दिन तो है, पर आज जो मिले है ये जीवन, बहुत प्यार के साथ ये जीवन हमें मिला है। और ऐसे अभी कई अन्य शिशु को जन्म जो हुआ था है, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत है।

रुको रुको तो जरा, इतना जल्दी जल्दी तो ना होना चाहिए। अजीब दास्ता, हाँ अजीब दास्ता है ये रिश्ता, ये सभी जो है कि हम कभी कभी ऐसे रिश्ते में पास पास में बैठे रहते हैं, और आजकल तो मोबाइल जो है ना, पास पास में बैठे रहते, पास पास में सोते रहते, एक बिस्तर में सोते रहते, पर अजनबी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। मैं कहती हूँ समय के देखकर मोबाइल जो है ना, वो कभी कभी अपने से दूर करके अपने प्राणी की, अपने घर के निवासियों को, पति के पत्नी को, बच्चों को, परिवार को थोड़ा से ध्यान देना, थोड़ा से प्यार देना। नहीं तो एक ही छत के नीचे रहकर अजनबी की तरह जीवन गुजारेंगे, ये होता है, तो इससे हमें बचना है। और उसके बाद बस ये हो।

जाने वाले गीत आपको सुना दी है लता जी। और फिल्म का नाम, जी हाँ, आप हमेशा पूछते हैं कौन सा फिल्म है, तो ये फिल्म का नाम है जो आपने सुने, मैं भी सुनी दिल लगा कर और सुनी, फिल्म का नाम असली और नकली मेरे दोस्त। असली और नकली नेखन तीन ट्विंस एस्ता के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है। हाँ, कौन असली है कौन नकली है ये समय के अनुसार सब पर्दे से बाहर आ जाता है। असली नकली के बाद चलते हैं सुनने के लिए फिल्म काला बाजार से, और 2 साल पुराना गीत है और ये है नेखन तीन सस्ता के। हाँ, नेखन तीन तीन सस्ता के बाद 2 साल पुराना नेखन तीन सस्ता के काला बाजार से निकाला गया है ये गीत।

ये चलाना कितना आवश्यक थे मेरे दोस्तों, कि खोया खोया चांद कितना रोमांटिक गाना, बस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पेश हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। उसके बाद हाँ, 5 बरस और पुराना हम आपको गहराई में ले चलते हैं। जितनी गहराई में हम जाएंगे उतने ही चमकदार हीरा हमको मिलेगी। इस बारे प्यार हुआ, इकरार हुआ सिर्फ 420 में से।

दे और लता जी की आवाज में। जैसे आपसे बताए फिल्म 420 पे निकली फैफ तक भी पिक्चराइज हुआ फिल्म। हाँ, ये गीत मैं अभी रोकती हूँ, ये बात आपसे कहना है, इसलिए मैं रोक रही हूँ ये गीत। Let up your manner, hurry up your ways। हाँ, अपने ही ढंग से अपना रास्ता कायम करो। तो मैं बताती हूँ, चार ऐसा जैसे आप सोच सकते हैं और जैसे चार किस्म के लोग हैं। तो पहला है जो ड्रीमर है, हाँ वो सपना देखते हैं। तो अगर ड्रीमर को सुनिए जी, ड्रीमर कैक नार मोखलखेदन, ड्रीमर कैक नार मोखलखेदन एन एरफारिंगन एन स्टर्क काउंटन फन ड्रीमर दी सेन। से सेन क्रिएटिव फॉरबिल्डिंग्स क्राफ्ट हैबन से एन रिफ्लेक्टिव सेन से एन ओक नोग gevoelig voor ervaringen. Ze allemaal een kijkje sterke punten gaan. En de valkuilen van het dromer die zijn blijven hangen in hun ideeën en moeite hebben met keuzes maken, ook nog verlies in focus. Dat zijn de kenmerken, sterke en valkuilen van een dromer.

आपके लिए चुन चुन कर और लाया जाता है आपका सावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से मेरे दोस्तों। सही टाइम पे सही गीत चलाना कितना अच्छा लगता है और हम उसमें डूब जाते हैं। यादें जो है ताज़ा कर देते हैं। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दैट यू नीड हार्ड दरखात फैक्टन, ये बात तो सही है। एर कॉम्प्ट अ मोमेंट दैट यू नीड हार्ड दरखात फैक्टन मार टेलर खात लॉस लातन एंड लॉस लातन दैट इज सेर बलांगरेक द फरलेख्त यू खात अन हेले अंदर गफूलंस

ये टाइटल गीत आपके लिए पेश किया गया है, जो नेकतीन इन फेफ तक में पिक्चराइज किया गया है, आज में आज के प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। मन्ना दई जी, रफ़ी जी, मुकेश जी, लता जी, आशा जी, हाँ जी, सभी जी जी यहाँ से हमको अपने ही मुखारबिंद से सुंदर सा गीत सुना दी है।

मित्रों, जब मैं सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों, इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मज़ा लें। जिंदगी के सफ़र का मज़ा लो मित्रों। लीफ मैमसन असिक द मखीफन जोंस ऑफ हंग ऑफ जोंस ऑन द हंगजी बसेफिक दट हीन ऑफ कॉम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Metron, our doston. सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मेंशन फॉर द ग्रोटेस्ट रैकडोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa hasteren, hamesa hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं इन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Saathiyon, agar tum peed nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano, tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइंस से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस एंड स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन एंड अल्स ये गेन स्नेल वह कुन जैन वेस दान एन पथ अल्स ये गेन जोन kunnen zijn. Wees dan een ster, want het is niet door je grootte dat je wint of verliest. Wees de beste in wat je ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए शरीर, ताकत मिलती है लिफमेंस फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखनिगन ऐत नोलखन एन ज इन ओज जिल ओपनीमन वर्त ओन ज जिल जोन वर्त ओन ज खेस्ट कालम एन स्टेरक वट लेट टॉट वेल विलेंट हेट इन ओंस उमगेविंग एन फरक्रेट ओंस लिखाम इमेंस क्राफ्ट वट मूई इस दिट टॉ वट इस दिट टॉ मूई लिफ मैंसन दिस खासो दूर खासो दूर। दोस्तों, हम सभी में अपने और दूसरों के लिए शांति सुकून के साथ साथ स्ट्रेस पैदा करने की क्षमता होती है, हम सभी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मित्रों, और ये हमारा नज़रिया है जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है। मित्रों, ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफ मैंसन वे आलोमाल हैवन एट फरमोकन ओम जो वेल रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस क्रिएरन for onself and for anderen and het is onze houding die een van beide onderhoud en voet ye hamare mein kshamta hai mitron to burai bhi hai hamare mein aur achhai bhi hai to in dono mein se hum kya karna chahte hain kaun si lege hum kaun wala accha rahega mitron।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूमटाइन है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूमटाइन है। दयालु विचार जरे हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, best and vriendelijke mensen. Wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन अल्स हैट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन लात हैट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। मित्रों, आर्द्रख मैंसन वो माकन है उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन तो फ्रीड इन तो विलन स्टेलन मर है लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्री द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन ओम मैट इधर इन खलुकह तो जैन वात मोई इस तो दे वात मोई इस। दोस्तों, समय कभी हमारा इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं रहता, तो फिर हम हमेशा सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? ध्यान करिए मित्रों, हम समय का इंतज़ार क्यों करते रहते हैं कि सही समय आएगा? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है, और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज़ मैंने आपको बतलाया है। फ्रेंडन बेस्ट मैंसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओन्स वारम वक्त वेद एन ऑल तेत ऑफ एट यूस्ट मोमेंट एर इस नोइट एन फर्केट मोमेंट ओम द यूस्ट थिंग एन टू डू एंड एर इस nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na, want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samai thik nae, het is geen goede tijd. Nee, de tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमंत फरखीफन इस मकलक मर ईमंत वेर कुनन फुरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरख हिफ्त आल तेत अनफोर्स प्रोखात और कैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वारेन कैनस तकोर्ट्स हित मार खदरख आलस ओप्लोस खदरख। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफ़र का मजा लो, जीवन का सफ़र का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूथ ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोई ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

चार वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए।

जिस प्रकार आकाश में वृक्ष जितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मुरुक में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति महुल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें हाँ कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा की आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतु, बीबी साहिबा, रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया। और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया

जाता है। 6 बजे से 8 बजे तक दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर, जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है। इसी तरह से अलमेरा में विष्णु मंदिर, जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं, वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है, जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं, और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है, संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को, जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण, जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों। जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यशा में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

0: Apfeltauge!
1: Mei wapas aunga. कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

दरियान खान और राश मीका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने यह संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हमें कहो, सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कैसी मुलाकात है, मैं किस कुमार में हूँ। कुमार सानू के साथ में अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आ अब लौट चले। मैं चाहता हूँ तुझको दिल जान की तरह, फ्रॉम द मूवी प्यार जिंदगी है। अभिजीत और अलका याग्निक मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिलबर दिलबर फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक जी।

अभी आप सुन रहे थे दिलबर दिलबर अलका याग्निक, आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम। फिल्म का नाम है मुझे कुछ कहना है, गीत का बोल है दुपट्टा मेरा, अनुराधा श्रीराम जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे दुपट्टा मेरा, और इस गीत के बाद ये सॉन्ग हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी धड़कन से आप सुनेंगे नाना करते प्यार तुम्हें से घर गई।

फ्रॉम द मूवी धड़कन से हमने पेश किए हैं। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में निकम्मा किया इस दिल ने। फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

शान और संजीवनी भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। शर्ली जी जब कभी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते, झांझरिया उसकी खनक गई। अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कृष्णा से।

अभी आप सुन रहे थे झांझरिया मेरी छनक गई, और ये गीत हमने पेश किए थे शिरली के वास्ते, जबकि शिरली भी ये प्रोग्राम को सुन रही है। बांध मेरे पैरों में पायलिया।

अभी आप सुन रहे थे बांध मेरे पैरों में पायलिया। हैया हो क्या मस्ती, ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के साथ में उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी अलबेला से आप सुनेंगे।

आकाश में की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। काश भी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।

काश बी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।

है सुनने वालों, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। वाह ई आए नीले गगन के तले, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नीले गगन के तले। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत जो है वो सच्चाई की तरफ आपको ले जाएगी। और हम खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सुरेन भगवान दीन जी को, जिन्होंने ये गीत मुझे भेजा और मैंने ये गीत को ढूंढ लिया। और ढूंढते ढूंढते आज आपके सामने मैं ये सॉन्ग ला रही हूँ।

ही आप सुन रहे थे 50 साल पहले, क्या हकीकत है सुनने वालों। थैंक यू EI। इचक दाना, बीचक दाना।

अभी आप सुन रहे थे निशा बी और अविंदा सिंह जी की आवाज़ में ईटक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। उषा उत्तर पा रहे हैं प्रोग्राम में। चलिए ये हो जाए आप सभी के नाम।

वाह क्या बात है। उषा उत्तप जी आपको सुना रहे थे लंबादा, बेन पराख और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। आ भी जा माहिया।

अभी आप सुन रहे थे सविता सिंह और बेन पराख की आवाज में रात भर मेरी पायल छलकती है। सुनने वालों, जब गर्मी होते हैं ना तो पंखा की ज़रूरत तो बहुत होती है। तो निशा जी यानी निशा बी जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, बताओ? क्या नहीं बताने वाली, खुद सुन लीजिएगा।

निशा बीजी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, पंखा तो लाई दियो ना सजन जी, पंखा तो लाई दियो ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगा ज़रूर। पृथ्वी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, श्याम सुंदर गगरी।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर घघरी उठावे हमारे घरे मूंगे के माला। क्षमा करना सुनने वालों, उषा खन्ना जी आपको सुनाने वाले हैं मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है। चलिए मिलकर सुनते हैं।

क्षमा करना सुनने वालों, यशुदास और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुना रहे थे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, फ्रॉम द मूवी साजन बिना सुहागन से हमने पेश किए हैं। और इसी गीत में अभी आपने सुने हैं कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे ही अपनी जिंदगी चलानी चाहिए ताकि कोई दुखी ना रहे। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं सुनने वालों, लेकिन अगर हम कोशिश करें सभी को खुश रखने को तो क्यों नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। फ्रॉम द मूवी सफ़र से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सफ़र, से हमने पेश किए हैं जिंदगी का सफ़र है एक ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। और ये सवाल तो होता ही रहेगा कि कभी ना कोई समझ पाया है और ना कभी कोई जान पाया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और सुख दुख हमेशा जिंदगी में होते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।

आप सुन रहे थे ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम चलाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी शोर से आप सुनेंगे जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम, महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं।

फ्रॉम द मूवी श्योर से हमने पेश किए हैं जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं कि कितने लोग ये फिल्म यानी ये फिल्म को देखे हैं, लेकिन इससे एक सीख मिलती है सुनने वालों कि हमेशा इस फिल्म में मनोज कुमार जी कहते थे कि जिंदगी में कितनी शोर है और एक हादसा हो जाता है उनके साथ तो फिर वो कभी सुन नहीं पाता है, और एक छोटा बच्चा है और बच्चा तरसते हैं अपने पापा के प्यार के लिए, क्योंकि उसका पापा सुन नहीं सकता तो वो लिख कर बताते हैं। तो कभी कभी जिंदगी में भी ऐसा होता है सुनने वालों कि अगर आप हमेशा कुछ कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, और जब वो सुनने लगते हैं तो बेटा बोल नहीं पाता है। यानी हमें कुछ ना कुछ फिल्मों से कुछ सीख मिलती है। तो जिंदगी में अगर आप हमेशा कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं तो ये गलत है सुनने वालों। चलिए ये गीत हम पेश करते हैं किशोर डा की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी दूर कराही, जीवन से ना हार जीने वाले हैं।

0: kaaskookkoel op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname. Her kaam ke liye, her advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahunfm.nl.
1: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं इश्तिहारे और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं. किशोर दा आ रहे हैं प्रोग्राम में और गीत का बोल है, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है. फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर से आप सुनेंगे.

फ्रॉम द मूवी पत्थर के सनम से हमने पेश की है आशा भोसले और दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आपने सुने हैं। मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। सुनने वालों, एक सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने हैं वाले हैं बंदा परवर थाम लो जिगर। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी नज़र होती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी की नज़र होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर रब की नज़र होती है।

अभी आप सुन रहे थे बंदा पडवर थाम लो जिगर। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे आँखों में कयामत के काजल। चलिए मिलकर सुनते हैं

महेंद्र कपूर जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे आंखों में कयामत के काजल, फ्रॉम द मूवी किस्मत से हमने पेश किए हैं। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रहती है रुके रास्तों की तरह। प्यार का मौसम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में तुम बिन जाऊँ कहाँ।

अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊं कहां, ये दुनिया में आके कुछ ना फिर, चाह सनम तुमको चाह के। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से आप सुनेंगे लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती। पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती।

इसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हमराज से हमने पेश किए हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मैं कहती हूँ जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं।

तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हमने पेश किए हैं। इतने बुरे तो नहीं थे, इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्ज़ाम लगाई लोगों ने। कुछ किस्मत ख़राब थी, कुछ आग लगाई लोगों ने। तुमने पुकारा और हम चले आए।

अभी आप सुन रहे थे तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले कुछ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी और वो ये है, जवाब तो हर बात की दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वह लफ्ज़ों को क्या समझेंगे।

गर तुम भूला ना दोगे। आपको सुनाने वाले थे लता जी। इतना है तुमसे प्यार मुझे, फ्रॉम द मूवी सूरज से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, फिल्म का नाम है सूरज और मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं।

तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर इंसान के दिल और दिमाग में बैठ जाए तो हर खूबसूरत और पाक रिश्तों की बुनियाद हिला कर रख देता है। यह कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

अभी आप सुन रहे थे बहुत जताते हो चाह हमसे, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। प्रेम दीवाने है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते एक बहुत सा सुंदर गीत है। ये आपको सुनाने वाले हैं उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक। चलिए मिलकर सुनते हैं।

फ्रॉम द मूवी प्रेम दीवाने से अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत जिंदाबाद, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक मिरकर आपको सुनाने वाले थे। गोरे तन से सरकता जाए, फ्रॉम द मूवी अखियों से गोली मारे। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

सोनू निगम अलका याग्निक और संजीवनी मिलकर के आपको सुनाने वाले थे। मेरा प्यार का रस सरा चखना और मखना।

अभी आप सुन रहे थे मेरे प्यार का रस जरा चखना ओए मखना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आई लव यू बोल डाल।

अभी आप सुन रहे थे आई लव यू बोल डाल फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं मेरे सपनों का वो राजा

अभी आप सुन रहे थे मेरे सपनों का वो राजकुमार फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से हमने पेश किए हैं। दोस्ताना है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से आप सुनेंगे देसी गर्ल।

फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश की है सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी जी की आवाज़ में भी आपने सुने हैं हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ फ्रॉम द मूवी जुदाई से हम पेश करते हैं

फ्रॉम द मूवी जुदाई से हमने पेश की है हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। तीसमर खान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माय नेम इज़ शीला, शीला की जवानी।

अभी आप सुन रहे थे माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। और शीला के जवानी के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दबंग, तो इससे हमने पेश किया है मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरिए राम राम नमस्कार। Have a nice Sunday and take care of yourself.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम।

दिलबर के बाद हम फिर आ गई है हमारी दोस्तों। साहिब भैया सूरीनाम में पिस्तौल वाला बहुत ज्यादा हो गया भाई, और मिस ब्राइक भी करे हमारी जनता, मिस ब्राइक करे इदिसेन की सबके ये पिस्तौल है, तो सोचे हमसे बड़का कोई ना बिसी पीर के बारे में सुन लो। तो अब देखो एगो बॉन्स खबाऊ है, एगो बॉन्स खबाऊ है, और ये बॉन्स खबाऊ कहाँ है? ये बॉन्स खबाऊ है भैया ओ का नाम बा ओ वी ओ एस बॉन्स खबाऊ हुआ पे फरमुदलक भैया बॉन्स खबाऊआ में रोफ भैल है दोन दाख के रात के वैरक नेमर्स और खानी सासी जो श्री नाम कहेगा फान ओखम ओखम वैरक नेमर्स और खानी सासी श्री नाम के जो द्राम बारांदर स्खलाख्त में है परमारी वो में हुआ पे एक अदमी चोटाई गए है भैया। यहाँ बतावे गए हैगा बस्तूर फर किसिंग रहा ओ वी ओ एस में जहाँ पे फक और खानी सासी हैगा एनर्जी बद्राइव श्री नाम के 11 तारीख सितंबर के बातचीत है और बोले एर एस फॉर आस नो खेन फरमान बकेंट से स्किट इंसिडेंट एंड फॉर किसिंग अब जाने बॉन्ड की फरकीसिंग के बारे में एक मिला चुटाई गए हुआ दागी से हमारी जनता। तो ये बात हैगा बाकी तो के लगे हम जाए भैया भूपा उचल गए है लांटी में काम करे कर मुंह बहुत कमती खोले है जाने हरदम बोले श्री नाम एट एंड दान रेस अब पाकी तो भैया एकदम मुंह में उकर पलाक बांध लग गए यास दास पहिर के चले है अब जाए के यहाँ मुँह कोली से भैया पाकी तो बोले है तुल जाने एबीएस बोली से गा जो हुआ के एबीएस गा लियो ब्रिंसवेग डायरेक्टर है बोले लांटी जो है दे ना बोले बहुत अख्तर स्थान थेगा हम लोग के पैसा भरे के लांटी पैसे ना भरे बहुत ढेर कर्जा है लांटी दे ना खबर के बारे में बोले पैसवा हमार कब भरिए मतलब के हम लोग के एबीएस के बारे में तो एक बारे में पक्की तो गए है मुंह खोले जाने का बोले है नानी एंड पे स्टेफानो पक्की तो बीरफेल बोले रे आखिर करी से बोले ऑफ द डिस्क्रिशन अश्विन अधीन और लियो ब्रेंसिक ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रीगनिंग फंड दिए ना बोले द टॉप मान फन ईबीएस से इन द इंटरव्यू बोले क्रिटिक बोले से दिया ना के पार्लियामेंटारियंस के बोले मिसमैनेजमेंट हैगा एनर्जी बेड्रैव इस मुद नाखान के दियाना से एगन बतालिंस वर्प्लेखनी तीखन ओफर दे एबीएस नाकों और बोले है गए दियाना मेर्दर खबावन है एन खरोत आंताल इरको सिस्टीम बां तरवेल स्प्राक सौ सेन फर अख्तस्तालख बतालें फन एबीएस अधीन स्प्राक दे तीखन और काम बोले एकर बारे पक्कतो बोले है पक्कितो बोले है हेत गवेल्डिग टू फिंडन दैट ब्रिंसवेक सेन उइस्प्राक हेव गदान एंड दैट हे जुइस फन द लीडिंग फन द पार्लियामेंट हर फरवा दैट दिट गडोक्यूमेंटेर्ड मेट बवेजन द बवेरिंगन फन द एबीएस टॉपमैन सौ तीखन स्प्रेकन तो बतावे हैं पक्की तो अब जाए के पक्की तो मुँह खोली से भैया बोले ब्रंसवाई के लिए ब्रंसवाई के लेती अब देखो निकेरी की ओर जाए खेतिहर लोन के भैया पैसा ना मिलल है पैसा ना मिलल है अब एक बारे में देना ले जो है रघुनंदन एक बारे में रखे रिंग से बोले गो स्पूत ऑन सुख करवाओ हमार खेतिहर के बोले अब पैसा ना रहेगे फॉलखंड सही सुन में धान चीटे के बोले हैगा पैसा उस अपना पावे हैगा अख्तर स्तालक है बोले उस सबके चाहे तेल कीने के मशीन से आरबेस क्रख्तन कम करतन के भरे के और बोले वनेर फॉलखंस फॉर फॉलखंस यारन लंग बरीसन से बोले लीफर करीस इस सब धान बोले कान लंग बावर फॉलखंस से फिनाशियल फॉर लीद क्लेम को मंत जेतन सब के ना बके ढेर पैसा ना पाई बोले ली फ्रांसिस बंकन एंड अंडरस्कुल एट्स मुदत इमस नेचुरली बताल फॉर द मेंस और इस
pensioen naar Pauwe. Hij wil juist dat wordt gekeken naar de gevallen waar er achterstanden zich meerdere seizoenen hebben opgestapeld. Ketra dienst tussen Paisa naar Pauwe. Regune Nenbole. Dat wordt onderzocht of betrokken werk, verwerker zich aan de geldende wet en regelgevens houden door verwerker. Dan waar onze Paisa naar deze wanneer zou blijken dat de onderneming structureel hun verplichtingen niet na. Komen mensen. Toen hamara khetir nikiri ke chaur ke baare mein hiya bataye gaye bhaiya Nederland ke duane ka pakdi se nani bara haat lage bole ke ma batave ke pade hai bhaiya pinda mein crack in pindas ai Suriname duane ma ka paise nani kon ji paise bhaiya Nederland se duane crack aangetroffen in pinda crack bhai an woordvoerder bevestigde ik er baare mein obole hai ga. En de fonds werd met de woordspelling bekendgemaakt. Douaniers zouden tijdens de controle heel verslavende pinda's hebben aangetroffen. De drugs waren volgens de mededeling creatief verborgen, maar vormden voor de medewerker geen lastige zaak om te cracken. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, en hier betekent nakali crack met pawe, kukahi met pawe, bhaiya, kalabu met pawe, palam met pawe. झुरमचरी में पावे है फरोख्तू में पावे है कैश प्रोद में पावे है आंसीन वाला सिर खोत में पावे खुद में पावे नरियर में पावे पिंडा सामल में पॉपकॉर्न में झुरमचरी में बाप रे बाप और कहां बोले हैं बीते हुए दिनों में इस पाई से भैया बंबू में फ्लैश डेट में बलादर में पत्ता में पाइस भैया ढोलक हारमोनिया में पाइसे वीरोग में पाइसे भाई का होए भाई धनी होए खांती नदमी इतना जबर है दुरुक्स के बारे में हिया से हुआ पठावे हे नीदरलैंड भाई अब देखो एगो बवाकर द्रियन फेफ तक यार के सुरीनाम देश में पकड़े रहा पकड़ान है ना बवाकरवा चोर के पकड़ी से सिपाही बवाकरवा के पकड़ी से भैया एगो सेशन देर तक यार के औरत के इब फैले के आदमी फरकराख कर ले रहा verdenking voor verkrachting van een 36-jarige vrouw en ik heb het aanwezigd hier de meer aan Bawakara Centrale Hoofdstembureau van de Frederik Derby Straat Suriname ke, jahan pe kabole hega stembureau hai centrale hua pe Bawakara 5 tarik september be bhaiya apan kaam pe bole hega voorgenaan op de werkplek we pe bhai de vrouw deed aan heeft obole onderzoek in kader van een onderzoek werd de bewaker natuurlijk aangehouden. Te kamuwe pe bhaiya jahan pe oke chahi bewaker ke huwe pe jaike aur farkrakh kar de bhaiya ye baat hai jhamara Suriname ke jo shikari lon hai bhaiya jab dekho tarikyo social media pe bandook leke ja hai jungle mein ee daange u daage hai sport kare admi lon yani apan fasi sab koi khanit kare है लेकिन फोर्स एक तक रही है भैया तपाना होनी में तपाना होनी के बाद है भैया जहां पे जगहिया के को दुर्पुक नाम्बा गोदो गोदो होलो भैया गोदो ओलो बोफन तपाना तपाना होनी खबीत में बा तब भैया शिकारी लोन गए लहा पिंगो दागे अपरे में दगावल कर ली से भाई पिंगो के झटका में हिया बतावे हेगा गए लहा पिंगो दागे भैया और ओही करमिया ओके दाग के मार ढाड़ी सोजे पिंगो दगली भाई द त्वे वारन है बॉस के इन खान ओम पिंगो स्ते याखन तेंदन ने याख खोद इन फन हैं मैंने याख weer aan de weer de ander raakte ook in legal hè op over de precieze toedracht en de identiteit van de slachtoffer zijn nog niet de pingo ke jhatka mein apan mede yakhrwe ke daak ke aur maadhari se dosto ee bari dukh ke baad bari jabar aise lamua phino bhaiya fartrak kare lagal janta bahut dukh mein bhai je un jund janta aur piwai nahi khani
फिर SLM पे उड़ल और सबके बड़ी दुख है। फेसबुक पे भी आदमी बोले हैगा, बोले हमने से SLM कम्युनिकेट ना करे है, तो बोले एक घंटा बाद उड़ी तो दुई घंटा बाद उड़ी तो कब उड़ी तो फिर उड़बे ना करे है। बोले वैसे ही लमा सत में SLM में से SLM फ्लिक जो ना पीवाई नीख नीख फिर Amsterdam आवत ही लमा का बोले अनुलेर हो गए है। और बोले नीख सितंबर के बोले टेक्निक से प्रॉब्लम है, बोले पाशा सीस वारन आल इंच चेक फॉर ट्रैक 8 बजे इसे बोले उड़त भैया तू स्टेल एयरबेस आदरी फिर तक जोन बा स्काई केयर के बोले हैगा बुधवार के Amsterdam आवत फॉल्क से गदिल्ड फ्लुक्ट ओवर सिक लैंडेड द फ्लुक्ट आस फ्लुक्ट in Paramaribo in de avond zou het weer naar Nederland vertrekken. In Tsjech-reizigers waren nog niet aan boord op het plein mee naar buiten, maar in Tsjech-Kertjokala wat er precies met het vliegtuig aan de hand is en hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen is niet bekendgemaakt, mensen. Ook is er ook geen nieuwe vertrekmoment aangekondigd door Surinaamse vliegmaatschappij. De Admiloon, Bhaya, Apanjoon, Jurma, Chirio, Chiri, Leke, Jatra, तो झूर रहेगे। मैं जो आदमी फ्रीसर ईसर के चीज लेके जात रहा उ सब आदमी के चाहिए फिन लौट के आवे के भैया एगो तीनर भाई सुरीनाम देश में खेलत रहा स्पेल टाइन लगे रहा एक चार मर्दाना ओके बरूफ करी से भैया एगो तीनर के ब्रोम फिश से बरूफ करी सेगा तीनर के और बोले एगो स्पेल टाइन रहा लीली दौरप वेख में सुरीनाम में और बोले हैगा ओके ब्रोफिसर में सुरीनाम ब्रू फन है ब्रोफिसर को ब्रोफिस व चरा ले गए है और बोले 1700 ऐसा दिल लंडवा के पास रहा वो लेके चल गए है तीन अरवा भैया वारे में द स्पिल ते आने ऑन स्पॉट टू द फरदाख्तन ऑफ टू ब्रोफिसर को आमन आन रहेन Op de volgende slachtoffer waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hem een vuurwapen. Een van de slachtoffers, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie. Kies op in Londoke bedrijf, Carissa Satraso leke, Brom leke bhagge, Lidorp Kisipahi, onderzoekere al leke gele brandsoep weg met gussel. Hamari Janta, je banchit hem. अब देखो भैया हो खाद के तुलन जानो भैया अरे भैया बड़का एनडीपी रहा एक दिन सोशल मीडिया पे गिर गया रहा और सब कोई एक नाम धरी से मने दरा से था ढेर आदमी के ऐसे बोले हैं बैतलांदिस के बकड़ा बाची ही करे। अब देखो हो खाद बारह दिन से कुछ ना सुना रहा अब हो खाद के भी अब मुआ कूल ले बोले दे मांग नो सब तक वे पीना बोले आदमी न जाने है कि हम लोग पीना करी लगा लूज फॉर हुकिंग 50% जो मा लंस दिनान तू तो कहने बतीकन फॉल्कंस रोनाल हो खार जो फक बोंस ले इधर है बोले हैगा दैट मैन नीड ना रेड फॉल के है स्टिल सेक आफ्टर फ्राग एंड आफ्टर रेगिंग नीड वे द लंस दिनान पीनारन इन हेड लंग भैया मैं तो हूं तो बड़का एनडीपी बाटे और तो हूं तो बाटे रेगिंग के बड़कवा और अपने आप के बोलिए सा एफ सा इना कुंद्रे दे मांग नो साबित तक वे पीनावन अपि दे ना में ना बैठल भैया त बहरे अब जरूर अब चिरैया गाना गाई दन कई कनी मान निना रेड फॉल से कई कनार व्हाट्स विल डून दिस व्हाट एर मेट ओंस गबेर द पॉलिटिक हिव दा निस मे त मेकन अस मच सेल्फ रेकन से हु हार्ड बोली से और ओही के पड़ते के आदमी तो आज बैठल है अब देख ओही के बोले हैगा कावल हु हार्ड ई आउट पूरा पुराना एनडीपीर पार्लमेंटारियर रहा हुएल प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन आनखीव दैट इन मोमेंटेल geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15% toe te kennen voor de landsmensen, landsdienaren. ये बोले ना देखे हम लोग कितना पीना करेला बोले इनो माल लेकवास मा दिनो अभी यंग और तक अनो मुश यंग दिस एक स्केल द प्रेसिडेंट नीट आउट वन से इव रोमल ओवर गनोमन दिस डूट हर बेस्ट ऑल दिस अ फक पोस्ट लेदर जाने गटाई काट के तेल लगा दे कि ना पीरा तो अब ओके ना दे से संतोखी के देश बोले तू रोमल ओवर ले है मैं जो समय पे फिर यहाँ पे एक ही ओवर ले रहा तब पहुंचे रहा भैया खाली सोना ऑफर ले रहा का भैया तो द रेगिंग फक बेकिंग सेन ओवर इन कॉमन ओम गमेंडे वर्क ग्रुप इन द स्टेलन बस्टांड आउट 8 वर्दगर्स के बारे में तो
हमारी जनता हो खार्त के बांचित रहा सूरीनाम के बारे में। अब देखो भैया जाए लगो सुपर मार्क सूरीनाम में चार आदमी अपन मुंह तोप के भैया मास्कर पहन के घुसल है वेस्टर्न फन सूरीनाम और बोले एगो वाख्तर के पकड़ के रात के सोमवार के और मंगल के रात के चार गो मास्कर पहन के ऊपर ऊपर मिस्टर करके हाथ गोड़ बांध के सुताए रहा भाई और जाए के दुकनिया में वो उनिंग एंड सुपर मार्क एंड पान में जाए के घुस गए हैं। द पुलिस तरफ द वक्त लातर फर्स्ट कबोन ऑन द अख्तर कौन में होके बांध दे रहा चार बजे सवेरे के बात है और बोलेगा तुम सुपर मार्क ऐखना शोंग से एक बेड पुलिस ब्यूरो निकेरी मेल तो निकेरी के बात है फरक्लार करे के वक्त रो में हेल्प हाथ हो रहा रूपर ने फरमूड दर इस एरेस्ट का नहान त्वास फोल्क द फरक्लारिंग फन वक्त रहा द फिर मान एंड हेम एक बजे रात के फर्रास करी ओवर मिस्टर करी से फोर्सियर दाना राम एंड ड्रोंगन फिया द ऑनस्टैंड ओपनिंग द वार्निंग बिनन अब सुख ना द वार द फॉलो स्पिलन और बताए गए हैं सुपर मार्क वर्ड gebruikt, werd doorzocht de eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Bolle, het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen. Op een keer in de vier naar het pand en verlieten ze zijn locatie naar dezelfde route Suriname. Toen je maand hebben, ja, wacht daar een week een pakkerke banker deze gaan. Je maand heb deko, 10 melaak een pakkerke Kashmirstraat mee in val van de woning. Ja, wat eigenlijk, hega Cuba ke oude tegen onder wie tuigo Cubaanse. Op maar और एगो एडमिशन नाम के 8 तारीख सितंबर के आनखौद कैसे का कश्मीर स्थान परमारीबो में बोले द एक्सी वेट आउटफोर्ड द मीडिया वर्कर सिपाही के ते पायरा अंडरस्टैंडिंग फॉर एन रीजन एन रीजन बेस्ड इन परमारीबो के बतावे गए फरमुडलक स्लाक्टऑफर फन इज अ मेंसा हैंडल करतरा ए मेंसन स्मोकल करतरा। Tijdens de inval werden meerdere slachtoffers aangetroffen. Zij zijn voor opvang en verdere begeleiding overgebracht naar de shelter van de afdeling. Tipje waren met ons tot de ijsje wat ja, hem zo chitelijke hem ego or giet sunaide. Toen vier hem aanjaenge. और वो कौन सी गीत है हमारे यारे यारो हमारी जनता दारू पी के डांस के बारे में

कारी ना दियो भैया, लीफर डेंस को लो ठीक है। तो हमारी जनता, एक दो समाचार आप लोग के और हम सुनाएंगे तो हमारा एक घंटा प्रोग्राम पूरा हो जाएंगे। तो ये बात है, फिर कहते बिन कोर्ट साइन वे मेन से अनपार ऑन ट्विकलिंग बिन कोर्ट साइन वे बरेक बार ऑफ वेट सॉप या और वही फोन। एक मैं चल भेज सकना हम लोग को माल माल तरीक ले हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पिन कोड खाओ बकेन मांग के और व्हाट्सएप पे हम लोग के रेक्सीज कुछ गीत मंगियो, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ बोले मंगियो भैया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए हम लोग लगे आ जाए एंड दर क्राइ हियर बिन कोड दे से इंफॉर्मेशन। रेडियो फोन हम लोग के बहुत आगे जा है दोस्तों, एंड एंड एंड नीट अलिंदाद वे फा रेडियो फोन हिव सन एक फोन करोक ग्रुप नामलिक मेंसे फन ओन से कोलीगास बिन कोड गाओ स्टार्ट में रन फोन चौ taalgroep ook mensen, wetsop zijn wij en wij zijn ook de laagste Janneke, subse laag, subse goedkope, laat me dat zeggen, een goedkoopste radio John Vermeijs DWH Vermeijs en Moutjes en alles kunt u gewoon bellen naar ons studio nummer 07-36-22-077 aanploekohem garantie DTH die subse goedkoop reclame, vermaais en alles ga ik doen en voor u dat

Een Chinese yen kwijtgescholden, maar niet de volledige schuld van circa 550 miljoen. Dus 320 miljoen Chinese paisa, ukabele kwijt, Cartesia, Burkina 550 miljoen Amerikaanse dollar wa. Dus Suriname, Chinese Karjaba. Ook mag de kwijtschelding niet worden gepresenteerd als een nieuwe schuldkwijtschelding in 2026 mee. Orikarbare mee, persbericht, bole reactiebureau van staatsschuld, bole hege bericht geven in zaken Chinese schuldkwijtschelding. Op bole hege dat de minister van Financiën en Planning op 8 september heeft verspreid. Op bole bole uchiwa aisena he, kisapai swa chinoa, bole skuldkardese. Op minister van Financiën en Planning, achke bole verspreid kardese. Kwijt kan de Chinwa na lega kan de paipaiswa. Lening tot 1 januari 2022 al uit het overzicht van de buitenlandse overheidsschulden waren verwijderd. Hierdoor vinden deze leningen buiten het gereguleerde proces van schuld herstructureren met China. Dus 2022 de regering Yannick Jefferson Toki kan de oesem met een renteloze lening per 1 januari per bolle buitenlandse overheidsschulden waren verwijderd. Op de informatie over deze lening is terug te vinden pandra 15 van de schuldplan 2026 mee. Toen hij zei, wanneer de kwijtschelding formeel is overgenomen, vermelde persbureau, toen hebben de minister van Financiën, die betaalde hij, adjanta, zo je chinoa, sab, chor deze kardjoa, maar hij zei, na hij, hij zei, chinoa, na hij, bhaiya. गलीबे में भैया हुआ पे भाई वर्द विसलिंग भले गलीबी एगो जगह है जहां आदमी जाए घूमे उमे भाई और गलीबी में का बोले है का ओ स्ट्रांत इज दैट बोले अब स्क्रिक दूर स्टिक पर दई बोले है का इंसिडेंट बोले एगो ओम और नीफ में भइल है वार बेड ओम हैन लीफन इसका कोमन ओमु भैया मर गए ओकर नीफो के छोड़ी भूख के माढ़ाड़ी से और बोले झगड़वा भइल है दोनों में काका बेटवा में Op de slachtoffer als gevolg van opgelopen verwondingen zijn overleden. Toevallig een politieagent die toevallig de Galibi verblijf heeft de verdachte aangehouden. Deze is vervolgens overgedragen natuurlijk voor verdere onderzoek. Mensen, de oom Margehe, op het Awehega. Doodgeschoken is de 40-jarige Jamie A. Margehe. Oh, je maat, hè. De kiet op, ja, hebben doodgeschoken is de 40-jarige Jamie A. Op vrijgekomen. Dus zijn 70-jarige Philips Groenberg woensdagavond door de dood in Christina Kondrikke baantje de Hamare Surinamke Janta. जो आप लोग को हम बताएला भैया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जो है तू जाने मदुरा के तो बंद करी से और जो फी पे रहा वो हो गए हुआ के प्रेसिडेंट एक औरत है तो वो आयल है सूरीनाम देश में भैया ओके ये नहीं सिमोन हम लोग के प्रेसिडेंट अनुदक करके बुलाई से तब वो आयल है भाई तब बातचीत होएगा फॉर सम वर्किंग फन फिशरी लैंडबो एंड नो हिल बिल्डिंग्स हम जाएला तेरी सोहन वेक में भैया हूं पे भी जब खवापन बरूफिंग भइल है जे कहुआ पे दगवल भइल है कितना कितना दगवल बताई भैया $4,000 लेके चल गए टेलीफिसी लेके चल गए है खास सिलेंडर लेके चल गए है और बरूफिंग फलीतन से लाख स्वार्थ थे उदा फिट से तो और हमारा भैया हम लोग के जो मिनिस्टर बैतलान से साके को करना मुआ भी तरी से ले ली और वो है तुलन जानो है हनीश मनोरद बोले हम लोग के क्रिमिनालिटी कमती भइल है तो ये बती आप सुरी Suriname en Venezuela mikken op samenwerking in landbouw, visserij en energie. Ke bare mein hamare janta aise baat hai roofers kitan maner en maken duizenden dollars buit mensen. To Peru bhaiya sluit zich aan bij door VS geleide veiligheids Allianz hield de Amerikaans. To dus to ye sab baat aapko hum sunate hai.
और यहाँ तक था हमारा आदेश और विदेश के समाचार सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और इस प्रोग्राम को हर हाल रविवार के सोमवार के 1 बजे हम फिर से करेंगे और बीच बीच भी हम चला देंगे। और हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी

और सुबह की चौड़ी और हमें देर हो गया, ये सब सॉन्ग आज फिजी का जोंग मांच आप लोग को सुनाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे भी जैसे लोग भारत देश से भोजपुरी अपना लेकर चले थे तो वहां फूजी में भी लोग कुछ वैसे ही गीत को गाते हैं। तो आप जानते हैं रेडियो वाहन के पास आपको सब मिलते हैं, तो हमारे पास आपको कभी कभी नेपाली सॉन्ग मिलते हैं, कभी मॉरिशियस के सॉन्ग मिलते हैं, सुरिनामी सॉन्ग तो सलाह से सुनते आए हैं दोस्तों, लेकिन आज आओ चला जाए ऑस्ट्रेलिया की ओर, फिजी में लोग कैसे गीत को गाते हैं।

स्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः हरिओम। एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों, कौन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा प्यार नमस्कार, और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का साप्ताहिक प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूं साथियों, ये अश्वमेध लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। 13 सितंबर 2020 सोमवार का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लाइव अनेट फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बड़े स्टूडियो से। जहां पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड में ढेर फील लाइस्टर प्लेजीर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइस्ट्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा faunfm.nl पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट लाना ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टाइम्स कंटोर यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-3562-2747 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-3062-2747। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं साथियों। नहीं तो फिर कहते हैं उस क्वालिटी लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो हमसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे, जो खास करके रोसिता बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौत्रिक से रोसिता बहन जी आप सभी को सदियों से सेवा करती आ रही है, ये अशोमीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से रोसिता बहन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। कंगन तो छूट चुका होगा ना, जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होती जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ी आन पड़ा है, आप एक मातम में हो कमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर बीती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त है, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। यानी तो फिर कहते हैं बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी रोजाना सुनते रहना, और थोड़ा बहुत तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फन हर्त बीत कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां, और हो सकता है कि आज कल या परसों आप कामयाब नहीं हुए किसी कारण, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्ख सर्वे रंदाख। इसी तरह अपने आप पर रोजाना थोड़ा और जोर तोर से कोशिश जारी करते रहना, और अपने आप पर विश्वास भी
जोर जोर से बढ़ाते रहे ना तो हो सकता है, और साथ ही साथ मेहनत भी जोर जोर से करते रहना तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधुओं, ये तो हम लोग घरे स्कूलिया पर कमुआ पर सगरों सीख ली ना, नोई तो अब कैफ है वो तो खलेट नेफर गिफ प्रारणा सीसा सो सलो बिलो बी ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बनंत फॉर इट लिस्टन। इसमें प्रवेश हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम फेन फकंसी। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान देना शहर का तकरीबन 23 और 24 डिग्री के दरमियान था सेल्सियस, और थोड़ा बहुत धूप भी निकला था न्यू सितंबर ख्राइस को और तो जहां पर भी हो जिस साल में हो प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। और साथियों प्रोग्राम का शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ एड फिल्म ललकार कंपोज बाय प्रोड्यूसर कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या छुगा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है साथियों ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है और इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहां से कहते आ रहे हैं और सदा ही कहते रहेंगे कि हैव टू नॉट स्टॉप द लीफ कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है शेर शायरी भी है थोड़ा बहुत कराओके भी कर दूंगा आप सभी के जाते जाते। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। रफी साहब जी हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत

गालो मुस्कुरालो महफिले सजालो। हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ हमारे सुरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद श्री रॉबी उदित राम जी के ब्यूटी ब्यूटीफुल आवाज में। मेरे ख्याल से द मैन विद मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठ गाना डायनेस्ट्री फ्रॉम सुरीनाम, द वन एंड ओनली मैस्ट्रो रॉबी उदित राम कह रहा है कि चलो हंस, वही है देश हमारा सुरीनाम।

शाबाश उस्ताद का उस्ताद और हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार द वन एंड ओनली माएस्ट्रो रॉबी उदित राम जी। मेरा भी गुजर चुका है 5:07 साथियों और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हमारे ध्यान अक्षर से और अति सुंदर साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे सरनामी संगीत का। अगला बयान नौजवान कलाकार हमारे और इंडीज का रोहित महाबली को लाते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल नया नया सॉन्ग उनका धैया मोटिया क्या बात है ननद तोरे, बिल्कुल न्यू न्यू फन रोहित महाबली। मिलके सुनते हैं एंजॉयड सरनामी संगीत साथियों।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे और इंडीज का मैस्ट्रो रोहित महाबली के ब्यूटीफुल आवाज में ये सुंदर बयान न्यू न्यू सॉन्ग आप श्रोताओं ने सुन रहे थे। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 20 मिनट गुजर चुका है 5 बजकर और आप सुन रहे हैं जोर तोड़ से सरनामी संगीत। अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडिस का द बैठक गाना क्वीन है यार 80-90 2000 बिजानवती चैतू जी का ये सुपरहिट सॉन्ग जीनी जीनी।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गाने वाले के हमारे सूरीनाम देश हॉलैंडेस का द बैठक गाना क्वीन श्रीमती बिजानवती चैतु जी। 6 मिनट रह गया है 5:30 बजने में। साथियों अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं और लाते हैं मिस्टर हिलावे हिलावे को प्रोग्राम में, उस्ताद रविंदर भोला सिंह फ्रॉम सूरीनाम। बिल्कुल नया नया सॉन्ग निकाला है और अब की हम न जाने ब्यूरफ्राउ वाले के काकरे जाए खोजे, ब्यूरफ्राउ से दिल, आगे सुनिए।

क्या बात है, बिल्कुल मजेदार सॉन्ग भैया ही लावे। देख रहे तो उस्ताद रविंदर भोला सिंह जी के बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे, और ये भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो जो तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। साप्ताहिक प्रोग्राम 2 मिनट रह गया है 5:30 बजने में। अगला बयान एक जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश फनोंस रेस्ट डिस्ट्रिक्ट निकेरी का, ये उस्ताद का उस्ताद, और हम लोगों को याद दिलाते हैं कि ये जो पल पल बीते जा रहे हैं, उमरिया हम लोगों को आज है और बिहान नहीं रहेगा। धैंकरान है उस्ताद का उस्ताद सत्यानंद रेखा, पल पल बीती जात उमरिया, निमरंत अंधौर नाम शहर, वंथत लीफ ड्यूट ओसो कॉर्ट है।

Shabash, shabash, the king of Beit Ghana, alerteira, ostaro ka ostar maestro, Ramdev Chaitu ji ka anubhav aur aap sun rahe the. 12 मिनट रह गया है साथियों जी पिछली में अगला बयान नौजवान कलाकार हमारे सुरीनाम देश का और वो आया 2 साल पहले हॉलैंड देश में और कितनों को यहाँ आकर टोपी पहरा दिया उनका बिल्कुल नया सॉन्ग सुग्गा

0: आज नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का मैस्त्रो कृष्ण छेरी जी का बिल्कुल नया सॉन्ग ना मानो मिक्स 100% लाइव। तो साथियों पूरे छोक का वक्त हो चुका है, यहीं तक था आज का हमारा पहला अध्याय सरनामी संगीत का जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का लेकर उपस्थित आ जाऊंगा आप सभी के खिदमत करने के लिए। और वो भी कुछ जबरदस्त सॉन्ग है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आफ्टर द ब्रेक साथियों, कहीं जाना मत है।
1: Live vanuit Den Haag. Waarom Hindustani Radio?

हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 13 सितंबर सोमदग आफन 2026 का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। सरनामी संगीत का प्रोग्राम 5 मिनट गुजर चुका है साथियों, 6:00। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नेचुरली वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बदंत फॉर हेड लिस्टरन। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश, जरूरी खबरें, इश्तिहारे, देन कंफर्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना, आप मात पर हम लोग ना कर और जितने बार आप कहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल फॉर मंडे टू फ्राइडे टाइडेंस कंट्रोल यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना, देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। बेंटिनो के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजार इस बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है साथियों। एंड सोशल मीडिया माल वीटेबो ओक बे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अंकारा ओक टीम waar heel veel omroepers en omroepsters live aan het zingen zijn voor jullie. Live op de radio en ook live in kleine en grotere zalen. Volg onze sociale media en ook die van de omroepers. Dan gaat u zeer zeker zien, vooral aanstaande vrijdag hebben we een leuk optreden. Samen met Take a Chance bij Wanika. Volg Anil Sergio en die gaat u alles vertellen, waar, hoe laat, hoe je moet aanmelden, et cetera, et cetera. Toen aanbiaker, jult, hem loka member bene, oh, roko bhi benai. Sabhi jankari iske bar mein aap taar kare op 07-365-2247. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, dan en de only maestro Johnny Number One. Wabi Aker, jult, hem loka member bene, oh, roko bhi benai. एक एकदम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, दत्त मीस्टल में सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुनते रहते हैं हमेशा की तरह। तो एक जबरदस्त सॉन्ग मैं रख चुका हूं, नोस्पांगरानी मिलोबी यू गुरु From the live बैठक गाना महफिल सरनामी चटनी पार्टी सॉन्ग क्रिएटेड बाय AI टेक्नोलॉजी मारत क्लिंट है लुक और मिलके सुनिए नाचिए कूदिए

क्या बात है, आप तो सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितना आगे चला गया है साथियों। विद इस क्रिएट और आई टेक्नोलॉजी कंस्मातिक इंटेलिजेंसी, मार क्लिंक एक्ट हेल लुक है। मिस्किन वर्ड दिट द टूकोम्स्ट ऑन अ म्यूजिक द मार्कर। अगला बयान बड़ी दुख दीना सुनाने को जा रहे हैं, ऑल्सो अन सरनामी चटनी। और देखा जाए रीनेश राम गुलाम ने ये अति सुंदर बयान को सजाया है, क्लिंट ओक ऑल्स ए आई म्यूजिक।

Namis sangeet maestro Arun Shivdat ji ka banaya hua ye ati sundar music aap sun rahe the, mix and mastered by Vikas Lakshman. 18 मिनट गुजर चुका है 6:00 साथियों और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर सरनामी संगीत साप्ताहिक प्रोग्राम चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का जो निष्ठाल सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं. अगला बयान सरनामी धरती ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम सूरीनाम.

Beautiful song, wonderful song, Apes Root. Oké, Siwami Pisikia. Ja, Oude Dikajai klinkt ook een beetje als AI technology, hè? अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं सुरिनाम देश का जबरदस्त गायक फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्माशी शो टाइम और रात है प्रोग्राम में शनिल नानू जी का सुनाते हैं आप सभी को सायारा से लम्हे तक

0: वाह क्या बात है अति सुंदर सॉन्ग है, सयारा से लम्हे तक, फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी शो टाइम गाने वाला शानिल नानू के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। एक मिनट बाकी है 6:30 बजने में। अगला बयान जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का नौजवान कलाकार शिवम राजाराम चटनी ट्विंटक सेशन ट्विंटक का रोलेट बेटी
1: दत्त

क्या बात है, शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का मैस्त्रो शिवम राजाराम जी का ब्यूटीफुल चटनी सॉन्ग आप सुन रहे थे। पंडित गुजरने वाला है 6:30 बजकर साथियों, तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ दो लाइन शेर शायरी है साथियों, यही तो खूबी है दो लाइन शेर शायरी का कि इतने कम अल्फाजों में लोग पूरी कहानियां सुना देते हैं। चुप करने अर्ज किया है, जुबा मेरी जिक्र तेरा, जुबा है मेरी और जिक्र है तेरा, रूह है मेरी पर फिकर है तेरी।

तूने अपनी, ये कैसी पहचान बनाई है तूने अपनी, नाम तेरा आने पर भी लोग याद मुझे करते हैं। ये भी होता है यार, जिंदगी कभी एहसान नहीं होती है, जिंदगी भी कभी आसान नहीं होती है, मगर हर मोड़ पर कुछ जरूर सिखाती है, हर दर्द एक सबक बनकर हमें मजबूत बनाता है। जीना सिर्फ गुजारना नहीं, जीना सिर्फ गुजारना नहीं, समझना भी होता है यार।

मुसाफिर से मेरा रब्त बढ़ा। उसको जब मैं देखा तो मुसाफिर से मेरा रब्त बढ़ा। मैंने ने उस शख्स में कुदरत की नजारे देखे। उस चांद को बहुत गुरूर है, उस चांद को बहुत गुरूर है कि उसके पास नूर है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे पास कोहिनूर है।

लगाया था पूरी वफादारी से, दिल तो मैंने लगाया था पूरी वफादारी से, और मिला दर्द हर एक यारी से। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने को। अगला बयान की तरफ लेकर चलते हैं और लाते हैं हमारे हॉलैंडीज का द लेजेंड और द लायन ऑफ बैठकाना उस्ताद का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी को, और वो सुनाता है आप सभी को हॉलैंड्स बैठक गाना लेजेंड देवेंद्र सिंह शिवनाथ मेक हिज ट्रिनिदाद डेब्यूट। मिल के सुनते भाई।

Ja, wat hey, Hollands, बैठक गाना लेजेंड देवेंद्र सिंह जो त्रिनिदाद में अपना प्रोग्राम जब देने को गया था उसी का ये एक छोटा सा लाइव रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे. अ ग्रेट आर्टिस्ट. अगला मेल आप सुनिए संडे से वन लोफ मिक्स शनिल माडियो और फैलेडी फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी शो टाइम.

Days, and this is One Love Mix by Chanel Mario and Valerie from the Music Pharmacy Showtime 2026. Dobrý dragi, sad brineme tomara dusra adjaj srnami sangitka. Ik agri bayan ap sunie jabardist kalakar. और ये रिकॉर्ड 1987 में रिकॉर्ड किया गया था और देखा जाए एन ऑफ द बेस्ट नंबर्स फ़ॉर शहीद वाहिद हुसैन ओइट अपगेनोमे एंड द इंडियन डायमंड्स दी टाइट ऑफ सन बेस्ट 1987 ओह माय लव बाय मेस्ट्रो लेट स्वर्गे शहीद वाहिद हुसैन जी के याद में और उन्हीं के मधुर आवाज में देर अफ्सलाइटिंग फन एन मोय सरनामी संगीत प्रोग्रामा.

पाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 3 मिनट गुजर चुका है 7:07 रविवार रात्रि 13 सितंबर 2020 का ये अति सुंदर प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। सरनामी संगीत तो आप लोग सुन चुके, अब सुनिए कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम। कार्यक्रम तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोसलो बिलोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एना तिलक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से हो जरूरी खबरें इश्तिहारे डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से डाउन सिर्फ इस ग्रांटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अब मात पर हम लोग बुला कर और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे बंधु, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा करते हो देख। सभी जानकारी बेल फन मांडा टॉट फ्राइडा टेनिस कंटोर यूर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-362-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना डैंक अनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो यूबेन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोग के बारे में रिक्लाम बनाते रहना है यार, चर्चा करते रहना और हो सके तो सेतंस हैप्पी भूफनोप जैसे हम लोग बोलते ढंढोड़ा भी पीट देना हम लोग के बारे, क्योंकि आप लोग है ना तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग तो काम करते हैं आप सभी के लिए। अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार कर कर के हम लोग आते हैं और सुना देते हैं आप लोगों को और आप लोगों को पसंद आते हैं, इसलिए तो हम लोग अभी तक आते रहते हैं और साथ मिलजुल के यहाँ पर हम लोग चलाते हैं आप सभी के खिदमत में। तो आप भी जरूर हम लोगों के बारे में बातें शाते करते रहना। बैंतियों के लिए फनफाहन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है और सभी जानकारी आप तो रोजाना हम लोगों के कोलिखस के जरिए और लश्तराज के जरिए सुनते रहते हैं ना। Want we hebben ook onze eigen karaoke team bij Radio Fahon. En we hebben ook links en rechts al opgetreden. Ook op de radio live opgetreden. Dus wacht deze maand, laatste donderdag vanaf 6 uur zijn we weer met onze volledige karaoke team van Fahon Hindustani Radio live op de radio. En natuurlijk kunt u dan Aker API. ये जो छोटा सा मोटा सा हम लोग का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार जो बनते जा रहे हैं आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-365-2247 पर, दम वर्ट यू डायरेक्ट डोर फॉर बोंदन आर ऑन से टीम लीडर द वन एंड ओनली मास्टर जॉनी नंबर वन। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और रो को भी बनाए, यू बेन फन हार्ट वेलकम। नहीं तो फिर है आपको आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। वादा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एक बिल्कुल नई आवाज को मैं सुनाना चाहता हूं आप सभी को और देखा जाए अन्नू मलिक जी के साथ काम कर चुकी है और ये भी अन्नू मलिक जी का बनाया हुआ धुन। गाने वाली ईशिता विश्वकर्मा विकी नगर का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान अगले जन्म में भी मुझको।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाई आप सभी को। इशिता विश्वकर्मा के अगले जन्म में भी मुझको तुम ही मिलना, कंपोजन अरेंज बाय मास्टरो अनु मलिक जी। अगला बयान जबरदस्त सॉन्ग है, इंडियन फैशन लंबारा जी का मशहूर गाने वाली एक यार 70, 80, 90, 2000 अभी तक गाती है द ग्रेट उषा उठुप जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग जो रिलीज किया गया था इन मई 2020 में। लंबारा जो भी होगा देखा जाएगा द ग्रेट ग्रेट ग्रेट उषा उठुप।

What a beautiful song है श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया पुराने जमाने के जबरदस्त गायिका द ग्रेट उषा उठूप जी के ब्यूटीफुल आवाज में जाना पहचाना सॉन्ग लंबारा सोचना भैया देखा जाए ये आगे क्या होगा ना वगैरह वगैरह श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि बड़का भैया श्री चंद्रसेन गंगा जी भी स्टूडियो में उपस्थित हो गया है हमारे बात आप सभी को वो खिदमत करने वाला है मेडसेन वेकलिक्स प्रोग्राम गीत और गजल ओ दिस गो तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो और देखा जाए ब्यूटीफुल सॉन्ग जो रिलीज किया गया है कुछ दिन हुए है बोल है आवारगी पे दिल और गाने वाला कंपोजर है गौरव माली जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग म्यूजिक दिया है महफूज अली जी ने तो मिलकर सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग एट 20 सेशन 20 पिक्चराइज किया गया है इमरान हाशमी और दिशा पठानी पर

सुंदर बयान और दिख जाए महान संगीतकार इस जमाने का महफूज अली के साथ पर उन्हीं का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान और गाने वाला था गौरव माली और ये अति सुंदर सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है महान अभिनेता द ग्रेट इमरान हाशमी और अभिनेत्री मलका हुस्न द ग्रेट दिशा पटानी जी के ऊपर। 6 मिनट रह गया है साथियों 7:30 बजने में। कुछ जबरदस्त नए सॉन्ग्स मैंने सेलेक्ट किया है आज का इस हसीन रात्रि के प्रोग्राम के लिए। तो अगला बयान इट्स वेरी न्यू हिंदी रोमांटिक सॉन्ग 2020 और पिक्चराइज किया गया है द ग्रेट एक्टर रणवीर के ऊपर और साथ उनका दे रही है मलका हुस्न द ग्रेट सारा अर्जुन। म्यूजिक अंत लायरिक्स बाय नगेश बिस्वाल एंड द सॉन्ग इज आल्सो सिंग बाय द ग्रेट मैस्ट्रो नगेश बिस्वाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में कितनी दूर हो। जबरदस्त सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

बात है, जबरदस्त सॉन्ग, कितने दूर और कितने पास पिक्चराइज किया गया है महान अभिनेता अग्रणी रणवीर सिंह के ऊपर, उनकी साथ दे रही है मलकाय हुस्न सारा अर्जुन। और ये अति सुंदर बयान को लिखा है, गाया है नकेश नगेश बिस्वाल जी, और क्या सॉन्ग है, बिल्कुल इस साल का सुपरहिट न्यू हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आप सुन रहे थे। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है, पुराना सॉन्ग है, निकाला गया है द फिल्म पाकिस्तान 1972, ओरिजिनल गजोंग डोर लता जी और कैफी आजमी जी के अल्फाजे है, उस जमाने के महान संगीतकार गुलाम मोहम्मद का बनाया हुआ ये जबरदस्त धुन। लेकिन ये जो रेट्रो ग्रूव है ना, चलते चलते का इन न्यू यश खिसेत दूर नतीरलक AI टेक्नोलॉजी, मिलके सुनते हैं चलते चलते द रेट्रो ग्रूव।

चलते रेट्रो ग्रूव आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पाकीज़ा और शीनेल खसामद और लता मंगेशकर कैफ यस्मी के अल्फाजे और कंपोजर गुलाम मोहम्मद का बनाया हुआ ये अति सुंदर और मीठा धुन इन न्यू यश स्टोक डोरमेडल फन एआई टेक्नोलॉजी। तो साथियों वक्त हो गया कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। वन पर्सन आई विल नेवर रिमूव फ्रॉम माय हार्ट, वन पर्सन आई विल नेवर रिमूव फ्रॉम माय हार्ट एंड इट्स ऑफ कोर्स यू माय डियर। नियत जिंदगी में एक बात याद रखना, नियत अगर नेक हो जिंदगी में एक बात याद रखना, नियत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता यारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। नील खुई और रिमेंबर दैट। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना यारो, कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं, लोग तो तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। आखिरी शेर, I still miss you every day, but I will not text you because I feel I am not an important person in your life anymore. Amen. था कुछ आखिरी शेर्स आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान की तरफ लेकर चलते, एक जबरदस्त सॉन्ग है साथियों, सजा लगती है, कंपोज बाय गौरव अम्माली और यति सुंदर बयान को खुद गाया है महान संगीतकार महफूज अली के लिखा हुआ और उन्हीं का बनाया हुआ ये अति सुंदर धुन। मिलके सुनते हैं स्पेशल कॉम। पिक्चराइज्ड गया है महान अभिनेता शहीद कपूर और अभिनेत्री जानवी कपूर जी के ऊपर, बिल्कुल न्यू सॉन्ग है, मिलके सुनते हैं सजा लगती है।

Hey, ja, Burgess song uit 2026. Mahan gayak aur composer is zamane ka maestro Gaurav Malik ke beautiful awaaz aur unhi ka banaya hua ye dhun, composed and arranged by music director Mehfooz Ali aur alfaaz bhi Mehfooz Ali ji ka tha. 14 मिनट बाकी है साथियों, 8 बजने में और धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहे हैं, लेकिन कुछ और सुनाने को जी चाहता है और ये एक ब्यूटीफुल रीमिक्स रेट्रो बॉलीवुड रीमिक्स सॉन्ग 2026 और देखा जाए एक जबरदस्त सॉन्ग है एड फिल्म तीसरी मंजिल Origineel gezongen door Asha G en Refi Saab. En het is een retro mix uit Bollywood. Hedendaags muziek. Volgens mij ook AI technologies mee bhi use kiya gaya hai. To milke sunte hai Jabarjast remix. Bass Boosted Party. Oh mere sonare sonare.

Hera Peri Drian kort versie remix van Omeri Sohra Zevin, also used by EI Technology. तो साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। तो यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार 8 बजे रात्रि में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम लेकर। हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्री चंद्रसेन गंगा जी मेडसेन प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड। तो मुझे आप सभी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूं आप सभी के खिदमत में। आदत से जो मजबूर हो गया हूं ना।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों को सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है फाउन एफएम इंटरनल पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीब 3 मिनट व्यतीत हो चला है 8:03 पर। अख और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दनहाक शहर से। जो बीमार लाचार तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई वही उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश। मुझसे पहले कार्यक्रम आप सुन रहे थे भैया सुरेन भगवान दीन जी का। भैया सुरेन बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। आपके एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की तरफ से और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से भी आपको एक शुभ रात्रि भैया सुरेन जी को पेश किया जा रहा है। जोंदख 13 सितंबर है, जी हाँ 13 तारीख सितंबर है, रविवार है। आप तत्पर है जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगी शाम होगा या रात्रि होगा, आप सबका हृदय से स्वागत कर रहे हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा दनहाक शहर नेदरलैंड्स। रविवार है तो इसका यही मतलब है कि गीत गजल के कार्यक्रम लेकर यहाँ उपस्थित हैं हमेशा की तरह। और आप तार कर सकते हैं 9 से 5 तक 3 5 से 7 तक 2 2 तक 7 फिर तक या तो 9 से 5 तक 3 2 7 तक 2 तक 7 में 7 में। आज भैया यूसुफ नहीं है, क्योंकि भैया यूसुफ का परिवार में कुछ घटना हो गई है तो वो सूरीनाम गया है, तो यूसुफ नहीं है, मैं अकेला हूँ। उम्मीद है आप तार करोगे और तो मैं ही उठाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ बातचीत होगा, फिर बाद में फिर देखेंगे। तो लीजिए रात्रि का कार्यक्रम है, हम शुरुआत कर रहे हैं ये शानदार गीत से, जिससे मैं आप कोशिश कर रहे हैं वो तार करने को। 9 से 5 तक 3 5 से 7 तक 2 2 तक 7 फिर तक या तो 9 से 5 तक 3 2 7 तक 2 तक 7 में 7 तक आप सुनिए ये गीत।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, मेहंदी लगी मेरे हाथ निगतिन तुए सस्तक, 1962 का ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आज सोंदक गीत गजल के कार्यक्रम में पेश कर रहा हूँ, 13 तारीख सितंबर है और आप तत्पर होंगे। आपका हृदय से स्वागत है एक बार फिर।

गुनगुना रहे भंवरे खिल रहे हैं कली कली, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

आर डी बर्मन के साथ पर एवरग्रीन किशोर कुमार जी और आशा जी आपको सुनाए 1972 का ये फिल्म में से निकाल कर जवानी दीवानी में से। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और लेकर आ रहा है देखा जाए तो बप्पी लहरी जी। बप्पी लहरी जी खुद अपने साज पर आपको क्या सुना रहा है, चलो सुनते हैं।

0: फिल्म सत्यमेव जयते में से निकाले हैं बप्पी लहरी के साज पर, बप्पी लहरी खुद आपको सुनाए। जरा देखो लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रानी के यहाँ पर
1: या तो दिया
0: दखमपुरो बिया कैसे रहले?
1: हाँ हाँ अच्छा रहले।
0: तब मोई खुशी के बाद तू बैल कर दे ले।
1: हाँ हाँ हमली गंगा है ला बैल कर दे
0: हिन्ना
1: तब वो भूल कबो ना हो पावे है
0: नहीं दर सिंदर दांसी हो या फोर खुबे कुआर हो नहीं
1: या या
0: ऑन सो एक्सक्यूजेस ना तू लग बगिया बाटी बाटी
1: ठीक तो नहीं इतना दाई तो करे अटकान आलते नहीं तो
0: यानी कुछ ना कुछ कभी कभी आ जाए तो
1: हाँ तो
0: ऐसा बात तो होगी तो
1: ऐसा मोई है तो इतनी से कभी हो जा
0: मैं यहाँ खलु को खमा प्लेनरवा बोले अच्छा रही खले गंगा तू जा हाँ नहीं ये बोली ना तो के चाहिए आवे के तो आवे पर तो डांट टेलीफोन होता ही थी वाल
1: या
0: हाँ मुफरों बे या बताओ कोनो कहा हो तो वो धल्ले है बच्ची
1: कहावत
0: ना धल्ले है
1: ना ना
0: अच्छा कोई बात ना है तू सर
1: जब वो करेला लास्ट टाइम जो बोलिए तो वो बोल जाएगा
0: ले ना तो आगे से लिख के धल लिए मखेब नहीं
1: बस ठीक है
0: फॉलो द केयर
1: या
0: सेम प्रॉब्लम अच्छा भैया कौन गाना से आज हम लोग तो खुश कर सकते
1: हैं वो गनवा हर घड़ी बदल रही है ये जिंदगी
0: हर घड़ी
1: घड़ी बदल रही है ये जिंदगी
0: हाँ रे कल
1: ठाव है कभी कभी धूप जिंदगी
0: नए प्रेम
1: हर पल यहाँ जी भर जियो
0: तो तू गनों का ना हम गोरी ला नहीं ले
1: तू गंगा
0: नहीं कौन जाने
1: तू तो कराओके ना
0: कराओके हाँ हम लोग के फाउन कुरुप के कराओके यहाँ पर
1: यह तो वही में गा दिए तो
0: ओ अच्छा अच्छा अच्छा
1: अच्छा
0: साले के दोनों ओके बेहद थैंक यू वेल हेल फिर लो इस प्लेसिर एंड तो दफा खंड केर चा
1: या तो दफा खंड केर एंड योसेफ एंड द फैमिली अत मुझे सेक्स
0: हाँ ना हेल फिर स्टेरक था हम लोग ऐप कर रहे हैं
1: स्टेरक था
0: इस कुंडन बेहद थैंक यू वेल
1: दा यस गुड ग्राह दा ओके नहीं ना आफत गंगा
0: ये थी बेया जी उतरह के रहने वाली। तो अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है चलो देखते हैं उर्शीला जी। उर्शीला जी रोतरदाम के रहने वाली है। उर्शीला जी के ये लिए ये गाना हमने रखे हैं बस सिर्फ बटम दबाना बाकी है प्लेयर में रख चुके हैं रोतरदाम के रहने वाली उर्शीला जी के लिए। उर्शीला जी शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए आपको भी इस तरह से हम आपको सुना रहे हैं आपकी मांगी हुई गीत बस आप इत्मीनान से बैठ जाइए और सुनिए।

ओपिनियर के साज पर रफी साहब की आवाज़ में हमने पेश की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ में से निकाल कर, और ये गीत चला रोतरदाम के रहने वाली अर्शिला जी के लिए। अर्शिला जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। आपके लिए जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी म्यूजिक है, जानी पहचानी आवाज़ है। अर्शिला जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है मैथिली मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला है।

याद रहेगा, प्यार का ये रंगीन जमाना याद रहेगा। ये शानदार दिव्यता आपको सुनाए हो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत सुनाने वाले विज्ञापन से पहले, वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी। बेया जी, आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, आपने भाग ली गीत और गज़ल में। उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बेया जी इस तरह से आपकी मांगी हुई गीत।

आपकी इनायत वह लता जी आपकी आपने सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तान रेडियो द्वारा हमने पेश की। लिखा तो नहीं है कि म्यूज़िक किसका है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है जैसे सुनने में आता है तो रवि के साज है। रवि के साज पर लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म वंदना में से निकाल कर। एक और गीत हमने प्लेयर में रखे हैं जिस समय आप कोशिश कर रहे होंगे तार करने को, तो है फिल्म आबू। फिल्म आबू 1968 का फिल्म है निगति अख्तर शस्त्र का सोनी ओमिक के साथ, जी नहीं सोनिक ओमी के साथ पर मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। ये गीत भी बहुत नहीं चलता है इस तरह से।

0: फिल्म आबरू में से निकाले हैं ये प्यारा गीत मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस निगति अख्त शस्तक का 1968 का ये गीत है सोनिक ओमी के साज पर। जहाँ तक मेरा ख्याल है लाइन पर कोई है। फोन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनावंत खुदनावंत भैया ब्लैक लाइस न धरिए अच्छा इन मोमेंट हेलो
1: या
0: हेलो या भैया खुदनावंत कैसे रह ले
1: हाँ अच्छा रह ले
0: सब कुछ मोई
1: ना एक वर्ष ना देगा हमसे जो तू भी हुआ आई है
0: कहाँ
1: वर्ष पर दिवस इस मोर होता पर्व दिवस
0: कौन पर्व दिवस
1: आज आसान मंदिर में रहा फीरिंग हमसे जो तू भी आई है
0: ओ ना ना ना आज हम के बहुत
1: मथुरा लोग आज फीर करे रहा
0: ओके
1: या बस हेल्प दर
0: ओके नहीं मोई एन तो असलेक
1: Ja, zeker, zeker was leuk, ja, met eten, drinken, alles gezellig. Mm. En dingen is uitreiking. Mensen doen een Hindi les, wapper he he,
0: dat
1: de uitreiking raad.
0: Oh, diploma uitreiking.
1: Ja,
0: okay.
1: Was heel leuk.
0: Nee, mooi toch?
1: Ha, waarom zit je zelfs aan die hoe aan je?
0: Nee, nee, nee, zondag kijk wel lastig dien rijden met de katin.
1: Oh, ja, maar het was een uitnodiging van mijn toera toch?
0: Nee, nee, uitnodiging, maar van wie was het? Of door wie is het?
1: Ja, maar soms kan je niet, hè?
0: Nee, de keer organiseren kan je aan of iemand anders?
1: Ha, als Mathura.
0: Oh, ja, oké. Nee, prima.
1: En een pandit. Bieren.
0: Oké, oké, nee.
1: Ha.
0: Aur kuch nawa haal, bhaiya?
1: Jom durut raha, eh?
0: Aur kuch nawa haal?
1: Aur kuch nawa haal? Ha, kun kuch nawa haal, hum batai.
0: Bol.
1: Ha, dheer nawa haal rahe hain.
0: Achcha. O mein se ego bata jai.
1: Eh?
0: O mein se ego bata jai.
1: उनसे एक को बता दे कुछ बताए नवा हाल को हो कुछ बताए नवा हाल
0: अच्छा कोई बात ना वह नहीं पूजा के समय खसी है राय यार खीब अच्छा अच्छा पता अब यार कौन गाना मांगत रहे सुने
1: धर्दे बे तो हम बोलो कि दत दत हाथे कौन से हम
0: या अच्छा बताओ कौन गाना मांगत रहे सुने
1: बेटा ना वेल कलीच इस क्या का मालिक कहाँ है
0: का ओह बिकल का
1: लिखे भी सब सब कुछ लाश हो जाए एक अपन गजल
0: हाँ हाँ बोल
1: तेरे तस्वीर को हम
0: क्या हुआ
1: तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं
0: और आगे यानी तेरी तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं बारा क्या बात है शाबाश वो भी ठीक है
1: वो भी ठीक है
0: अच्छा बाकी जो है तो खोज खाज के धल रही है नेक्स्ट वीकेंड भैया बताओ वेलिट कन फनाफंत ब्लेम आके बताओ
1: कुछ बोला
0: कौन गाना से तोर के हम लोग खुश कर सकेले आज
1: या दिली चा
0: कौन गाना
1: तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लगा लेते हैं
0: तो गाना बोले तो फिर गाना को तेरे तस्वीर
1: हाँ तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं
0: दिल से
1: दिमाग सिंह तो तू है दिफ्राउ चुनाव दिसंगरेस वेट से भी है
0: कौन फ्रॉग आई से
1: हाँ एंड एंड तो संदू बैठ देंगे
0: ओके एलान फॉर एक हेयर कैंडल नीट ये लग सके मारे खूब तरह कम काम फिर
1: हाँ गसल इसमें गसल
0: ओके तेरे तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं
1: या
0: अब Is goed dan, Bea? Nou, dan wens ik een fijne avond, Bea.
1: Ja.
0: Oké, en heel veel luisterplezier.
1: Ja, zeker.
0: En till next week.
1: Ja.
0: Ja, oké.
1: U ook, en bedankt en een fijne avond.
0: Ja, dankjewel, Bea.
1: Tot de volgende keer.
0: Zeker weten, dag. Je thie Bea, je Bea Gajraji, Den Haag, keer Rehnewali. तो अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो ये है इस तरह से

फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं लता जी और मन्ना दे जी मिलके हैं, आपको सुनाए शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है, देखते हैं इस तरह से क्या ख्याल है।

दुनिया में ऐसा कहाँ, सबको नसीब है लता जी की आवाज़ में फिल्म देवर में से निकाले हैं, रोशन के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए प्लेयर में हमने एक गीत रखे हैं, वो जी है लता जी की। लता जी की एक गीत का वर्जन जो है, यानी रफ़ी साहब के वर्जन आप हमेशा सुनते होंगे, इन मोमेंट रफ़ी साहब का वर्जन आप हमेशा सुनते होंगे, लेकिन हम आपको सुनाते आज लता जी की। लता जी की भाग इस तरह से आ रहा है, हम आपको सुनाते हैं लता जी की भाग।

0: अकेले है चले आओ जहाँ हो, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये गीत। रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने बहुत बार सुने होंगे, लेकिन लता जी का कम चल रहा था इसलिए हमने सोचा चलो आपको ये सुनाए। देखते हैं लाइन पर को है, एक मिनट। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा ना आफंत
1: भाई
0: भैया चांद नमस्कार। एक मोमेंट धल्य रफ न धरिए या भैया चांद नमस्कार, कैसे समाचार है?
1: अच्छा भाई
0: सब कुछ मोई थकाई उतरल
1: जी हाँ
0: अच्छा मोई मोई अच्छा भैया चांद
1: कैसे चले
0: जी हाँ सेकंड को चांद धीरे धीरे कौन गाना पहले गाना वाली खुआली कौन गाना मांगत रहलो
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया
0: एक परदेसी मेरा दिल ले गया वाह क्या बात है शाबाश मोई। अच्छा अब बताओ कुछ कहा हो तो वो धल ले कि अब थकाई है
1: ना वैसे कुछ ना अब
0: ओके नहीं प्रीमा अच्छा ना रही खल है अच्छा तब बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि वादा के मुताबिक सब कुछ ऐसे ही रही नमस्कार
1: राम राम राम राम।
0: ये था श्रीमान चांद रघुनाथ अल्फनंद रेन के रहने वाला और उनकी धर्मपत्नी खिसला, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देनहा के रहने वाली बेया जी के लिए। बेया गजराज जी आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों को मिल गया है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। और ये अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह ये दोनों मिलके आपको सुना रहे हैं इस तरह से देनहा के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए। बेया जी ऑल्स टू बिलीफ

तेरी तस्वीर को हम दिल से लगा लेते हैं। अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह आपको सुनाए निखिल विनय के सांझ पर फान हिंदुस्तानी रेडियो के गीत और गज़ल के कार्यक्रम में। और ये गीत के मांगने वाली थी देना के रहने वाली बेया गजराज जी। जी हाँ, बेया गजराज जी, उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाए हैं। बेया जी, आपको भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले वो है अल्फानंद रैन। अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ, श्रीमान चांद रघुनाथ उनकी धर्मपत्नी खिसला जी के लिए। तो भैया चांद रघुनाथ जी और खिसला जी के लिए चलिए ये गीत हम पेश करें फिल्म फागुन में से निकाल कर। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चांद जी और खिसला जी।

0: कौन परदेसी मेरा दिल लगाया, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ओपन एयर के साँझ पर हम आपको सुनाए हैं। और ये गीत चला अल्फोन अंदरैन के रहने वाले भैया चांद रघुनाथ, उनकी धर्मपत्नी खीसला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए हमने पेश की। भैया चांद और खीसला जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनाफंत फ्रॉम मिला, कैसे रही फ्रॉम मिला?
1: अच्छा रेली, आप कैसे?
0: बस चले धीरे धीरे, एक एक गुजा है ऊपर वाला के दया से, आप लोग की कृपा से। कैसे भैया मंसूर के हाल? मोई
1: अच्छा है, सब कोई अच्छा है।
0: तब मोई मोई मोई फ्रॉम मिला, बताओ कौन गाना मांगत रही सुने?
1: फिल्म मिला, मैं भौरा तू है फूल।
0: अरे वाह क्या बात है। ओके, मैं भौरा तू है फूल। ओके एंड फ्रॉम मिला, और कोई नवा हाल को कहावत वो धल रहे हैं?
1: ना वैसे तो कुछ नहीं
0: है। अच्छा खीफ नहीं, नेक्स्ट वीक। ओके ये थी मिला जी सूतर मेयर के रहने वाली। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो है ये, इस तरह से आ रहा है।

मुन्ना दे जी और लता की आवाज़ में पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और है और वो गीत हम चलाने वाले हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी, सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी और उनके खामिद भैया मंसूर जी के लिए। मीला जी और मंसूर जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद पेश करते हुए, चलिए हम आपकी मांगी हुई गीत हम चलाते हैं। इस तरह से आ रहा फिल्म मेला का नेगेटिव अख्त फिर तक का ये गीत।

0: बिन भाए।
1: नीघ तीन अख्तम फेरतक का ये गीत मैं भंवरा तू है फूल लता जी और मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए फौन हिंदुस्तानी रेडियो की गीतों गजल के कार्यक्रम में। और गीत को मांगने वाले थे सूत्रमेर के रहने वाले मीला जी और उनके खाविंद मंसूर जी। मीला जी भैया मंसूर जी आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। देखते हैं एक गीत शायद मैं आपको और सुना सकूंगा उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और वो गीत है ये

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी मिलके आपको ये गीत सुनाएं। चलिए जो लोगों ने तार किए हैं उन सबको धन्यवाद तो दे दें। गीत गज़ल के कार्यक्रम जो आज था उन्होंने उसमें भाग लिए हैं उर्शीला जी रोतरदाम के रहने वाली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बेया जी इधर के रहने वाली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

और बेया गजराज जी धना के रहने वाली, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। और भैया चांद्र गुना तो खिसला अल्फनंदा रेन के रहने वाले हैं, और उन लोगों को भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और आगे चल करके मीला जी और जनाब मंसूर सूत्रमेर के रहने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। और मैं अपने तरफ से भी आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो कि आपने भाग लिए कार्यक्रम में। तो यहाँ तक था यह कार्यक्रम जो मैंने पेश की आप सबको। एक बार फिर जो लोगों ने तार किए हैं और जो लोगों ने कोशिश किए होंगे लेकिन अंदर नहीं आ पाए, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाले दोंदरदाग को, जी हाँ आने वाले दोंदरदाग को, लेकिन आपसे भी कल मिल रहा हूँ, कल रात्रि को 7 बजे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रहूँगा, करीबन 1 घंटे या 2 घंटे, ये भी हो सकता है। कल रात को 7 बजे मैं एक बार फिर आपसे मुखातिफ रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा, और आप सबको एक शुभ रात्रि। मेरे बात हमारे सहयोगी मिलके आपके सेवा में रहेंगे, और मैं आपसे मिल रहा हूँ जैसे मैंने कहा दोंदरदाग को, लेकिन उससे पहले कल रात्रि को 7 बजे एक बार फिर हम आ रहे हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुदा हाफिज़।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753563 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

तो यहां से पहला शेर हम आप लोग को और सुनाए हैं और ये है फॉर ऑल द लवर्स, कहते हैं तहजीब में भी उसकी क्या खूब अदा थी, तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क कर। वारे दोस्तों की तहजीब में भी उसको क्या खूब अदा थी, नमक भी अदा किया तो जख्मों पे छिड़क करे। तो हम चलते हैं, देखे दिखने में भोले हैं, दिखने में बहुत भोले हैं, लेकिन चाल जो है वो अग्नि के समान है। तो ये बात है कि देखने में भोला है और बॉम्बई का बाबू 96 का मूवी है और क्लासिक सॉन्ग है। और बॉम्बई का बाबू की ओर हम चलते हैं।

और दिखा मैंने भोला है। और ये आशा भोसले का ये गाना है बम्बई का बाबू, और ये फिल्म का नाम है। तो जितने लोग दूर है तो दूर के मुसाफिर के लोग के लिए हम कुछ गीत और शेर आज हम आप लोग को सुनाए हैं कि कहते हैं फरियाद करके, फरियाद कर रही है ये तरस रही हुई है निगाहें, फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें। जो लोग दूर रहते हैं तो फरियाद तो बहुत करते हैं, तो कहते हैं फरियाद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, और देखी हुई किसी को ज़बाना गुजर गया है, देखी हुई किसी को ज़माना गुजर गया है, और जो किसी को देखे हुए ज़माना गुजर गया है तो उसके लिए हम एक स्पेशल सॉन्ग चलाते हैं कि जो अगर दिल के आरमा जो है वो जो टूट जाते हैं तो आंसू बनकर, आंसू बनकर आंखें में झलक जाते।

0: और दिल के अरमां आंसू में और वो रह गए और कहते हैं ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम दिल को हम कह कह के ये हम कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं, हम कह कह के दिल को समझा रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं हमारे दोस्तों। इंतजार में लोग बहुत बहुत बहुत बहुत यादें करते रहते हैं हमारे यारो, ये सब बात होता है जब किसी के इंतजार करते हैं, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, वो तारों की तरह रात भर चमकते रहे, हम चांद से तन्हा सफर करते रहे, वो तो बीते वक्त उन्हें आने ना था, हम यूं ही सारी रात भर घबराते और बतलाते रहे। और जो कभी कभी लोग कमरे में रहते हैं तो कमरे की जब ताला कर देते और चाबी गुम हो जाते हैं, तो जब चाबी गुम हो जाते हैं तो लोग तुरंत क्या सोचते हैं, हम आपको बताते हैं।
1: अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो,
0: सोचो कभी ऐसा हो तो भला क्या होगा,
1: कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम
0: तो जब चाला चाभी लाश हो जाते तो लोग कांपते लगते हैं।

0: कौन?
1: और हम तुम जब अपने कमरे में बंद होगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अभी आप लोग हमें जरूर बताना कि क्या सुन सकते हैं दोस्तों। नॉर्मल्स हम सब एतर पे भी सुनाई देते हैं, यानी अपनी गाड़ी में सुनाई देते हैं, ऑटो में जब बैठेंगे नीदरलैंड के बातचीत होते हैं ना सूरीनाम या अन्य देशों में, तो यहाँ अपने ऑटो में सुनाई देते 5.7 फ्रिक्वेंसी पे आप लोग 24 घंटा हमारा प्रोग्राम को श्रवण कर सकते हैं। और हम सुनते हैं और देहाबी प्रेस रेडियो पर पूरा हॉलैंड देश में सुनाई देते हैं। नहीं आप लोग www.fahun.nl हमारा यानी कि इंटरनेट पे पूरा विश्व में पूरा दुनिया में हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। हमारे यारो तो हम भी चलते हैं और एक शायर की ओर। और शायरी अब क्या है, उल्फत के मारू से ना पूछो अलाम इंतजार का, उल्फत के मारो से ना पूछो अलाम इंतजार का। और 50 है जिंदगी और ख्याल है बहार का, 50 से है जिंदगी और ख्याल है बहार का। हमारे यारो एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक लम्हे के लिए मेरी नजरों की सामने आ जा, एक मोहब्बत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है दोस्तों। मुद्दत हो गया है, एक मुद्दत से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा है। तो हम जा रहे नरगिस राज कपूर के ओर और मूवी के नाम है चोरी। और चोरी चोरी चोरी में क्या होता है, और दादा दादा नहीं परमा श्री मन्ना दी और नैतिक लता जी मंगेशकर का ये लवली सॉन्ग आओ हम सब सुना जाए।

और आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, और जब तुम मिलेंगे तो बहारों में फूल बरसेगा। और उसके बाद हम और आगे को अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, आई जिंदगी तेरी भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आहत ना रही। जब किसी के दिल किसी से टूट जाते हैं हमारे यारो, तो ये सब बात निकल आते हैं। तो कोशिश करना कि अपना मोहब्बत जो है, अपनी मोहब्बत के मजबूत पकड़ के रखना, जबरदस्त पकड़ के रखना, और इतना जबरदस्त पकड़ के रखना कि उसमें दरार ना आवे। ये है कि मुझको अब तुझसे अगर जब अपने प्यार को अपने दिल को मजबूत जबरदस्त नहीं पकड़ के रखेंगे, तो ये सब शायरी आपके लिए है कि मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, ऐ जिंदगी तेरे भी मुझे जरूरत नहीं रही। बुझ गई अब उसके इंतजार के वो दिए, कहीं आस पास भी उसकी आदत ना रही। तो उसको भूल जाना बहुत मुश्किल की बात है। और माइती मुकेश नाइती गिल लता मंगेशकर या जों आपको बताएंगी कि किसी को भूल जाना कितनी दुख देता है। इस फिल्म में यानी कि जीन तमन मनोज कुमार ने काम किए हैं और मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान की ओर हम चलते हैं।

और मैना भी आपको, मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब आप हमें भूले नहीं देगी तो भला जोनी आपको कैसे भूलेगा। हमारी यारों की यारों की कहते हैं मुझको अब तुझसे मोहब्बत नहीं रही, अभी हमने कह दिए थे लेकिन अब कहते हैं कि ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, ये इंतजार ना ठहरा कोई बड़ा तेरी, किसी की जान गई आपकी अदा तेरी। जी दोस्तों कि कब आ रहे है हो, कब आ रहे हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रुका है, हमने चांद रोका है एक एक हमने चांद रोका है एक रात के लिए, इसलिए कि पहला पहला प्यार में क्या होता है।

हम दोनों दो प्रेमी और दुनिया छोड़ चले रोमांटिक सॉन्ग है, राजेश खन्ना का फिल्म है, दादा किशोर कुमार जी और नाइटिंगेल लता जी का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है हमारे यारो। और ये गीत है, फिल्म के नाम है टांच नेगती सेशन फाइव तक, दादा हेमंत कुमार और दादा हेमंत कुमार का ये गाया हुआ सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दीवाना हुआ पागल, नॉक्सेज द लवली सॉन्ग मेंशन। तो हम जानते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी के चुनरिया उड़ जाते हैं, तो चुनरिया पे भी गीत बन चुका है यारों।

और सर से वो सर की, तो कभी धीरे धीरे के सांझ में हम चलते गोविंदा और नीलम की ओर, और वो है खुद गर्ज, मूवी का नाम है खुद गर्ज, सुपर हिट सॉन्ग मैं से मीना से नशा की डरी कैनेडी से बैल है।

और आप की आजानी से और क्या क्या हो जाते हैं हमारे यारो यारो, प्यार की कागज पे लिख दूँ तेरा नाम।

कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका यागनी का ये सॉन्ग है।

और तू धरती पे, चाहे जहां भी रहोगे, चाहे श्री नाम में रहोगे या जहां भी रहेगे, तेरे धड़कन से पहचान लूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका यागनी का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

Hoti par sando Rajinder Kumar Sherabanu Aman songs ka ye geet hai ek old and gold bhi isme hum laga diya hai sath sath hum chalte hai zonu zonu aur zonu nigam ki or chalte hai jis ne khanti kriya yara ne khanta ka hai song hai govinda ji isme kya karte bhaiya kisi ko dulhan banate hai अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्ने 1900 एंड सी फन 1900। और ये है मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आप सुनाइए कौन से नंबर ये है।

तू भी किस पे आ गया है गीता दत्त का ये जोंग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का, ये सॉन्ग सुपरहिट फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, नीखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकी लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बांध में पछताना पड़ता है नहीं, बांध में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैति जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते है उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: क्या नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: और तुम इस तरह से और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

0: आए जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट गया
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिगर नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: मशहूर हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको, वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज ही मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।